ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्याधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम